ही समत त्रिपुरारि तरु विदित सकल संसार कौशिक सुनो बंद एह बाल कुटिल काल बस निज कुल घाल तुम हट कहु जो चाहो उबार कहीं प्रताप बल रोष हमारा सूर समद करनी करही कहीं न जनाब ही आप विद्यमान रण पाय कायर करही प्रलाप राम मात्र लघु नाम हमारा परशु सहित बर नाम तुम्हार कहु सुभाहु न कुल ही प्रसंसी कालहु डरहि न रण रघुवंशी विप्र वंश के असि प्रभुताई अभय होई जो तुमहि डराई सुनि विदुगुण बचन रघुपति के उगरे पटल परस